Some volume, please. Ta ta ta kita da. Volume, please. Volume da ta kita da. Da ta kita da. Ta ka din ta kita ta kita ta da ta kita ta da da da. Ta kita da da ta kita da. Ta ka din ta kita ta kita ta kita ta kita ta kita ta kita ta kita da da kita da da ta kita da da ta kita da ah da ganapati da. Ganapati dha dha ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati ganapati dha dha ta dha dha dha ta dha dha dha ta dha gana gana gana gana ganapati gangang ganapati gana ganapati gangang ganapati dha dha ganapati gangang ganapati gajananam viganeshwar gyani data ashtarupa gajavadana chatur bhuja shubharamba data vakratunda sundar विशाल मस्तक एक दंत सोहे मोहे जय गणेश लंबोदर एक दंत धा एक दंत धा एक दंत धा तकट तक तक धिन तधा तकट तक धग धिन धा तकट तक धर धिन धा तकट तक धग धग धा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति त्रिभंगता खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली लियो भोर रंग भोर सब भोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जा था तकट था तकट था तक धिन तकट था धिन ता धिन तकट तकट तकट धिर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट धिर धर कर तकट ध